0: 107.4 Star FM Kebumen.
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: taking my car.
1: Pay back the loan. Take back your car.
2: पूरा एक साल हो गया है, कमाई एक डॉलर की नहीं हुई, बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट जीरो, क्रेडिट कार्ड्स कैंसिल कर दिए गए हैं, वी आर लकी फोन्स काम कर रहे हैं, पानी आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है, वैसे जल्दी इन सब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: क्यों?
2: हाउस लोन इंस्टॉलमेंट्स 6 महीने की,
3: सो बिग डील, थोड़ा सामान बेच के हम
2: नहीं बेच सकते, हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो लोन पे या तो क्रेडिट कार्ड्स पे लिया है, ये फर्नीचर, कारपेट, पर्दे, हमारे कपड़े, तुम्हारे ये सूट, यहाँ तक कि तुम्हारे ये जूते भी।
3: ओके ओके, तो सब कुछ लोन लेके खरीदा है, अब वापस करने में थोड़ी देर तो हो ही जाती है ना, सो घर से तो नहीं निकाल देंगे, दे कांट डू दैट।

0: a bad thing.
1: Daddy, मुझे poor नहीं होना.
2: It's not a bad thing. थोड़ा मुश्किल है, but poor होने में कोई बुराई नहीं.
1: But हम poor होंगे तो मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा. Mrs. Peggy को छोड़ना पड़ेगा.
3: नहीं छोड़ना पड़ेगा. Never. हमें सिर्फ poor होने की acting करनी है. It's like a game, right?
2: हाँ.
0: Yeah, it's a game. It's a game.
1: कौन सा game?
3: It's called Don't Worry, Be Happy.
1: ये कैसा game है?
3: It's a reality show, princess, for TV.
1: हम TV पे आएंगे?
3: हाँ.
0: Reality show क्या होता है?
1: Reality, not reality. उसमें अलग अलग teams होती है. उनको किसी weird जगह पर रहना होता है, जैसे कोई island, haunted house या jungle. वहाँ hidden cameras होती है, जो सारे teams को shoot करती रहती है. फिर जो best team, वो winner. Simple.
0: हमें कहाँ रहना होगा?
2: एक छोटे से घर में, poor लोगों की तरह. और हमारे पास होंगे सिर्फ $2,000.
3: But हम कभी भी sad नहीं हो सकते.
2: हर वक्त हमें कोई छुपे हुए कैमरा से देख रहा होगा.
3: और अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो हम आउट.
2: हमें हमेशा हैप्पी रहना पड़ेगा ऐसे.
3: और जो टीम $2,000 में सबसे ज्यादा दिन सबसे ज्यादा हैप्पी रहेगी वो विनर्स. ओके, कौन खेलेगा डोंट वरी बी हैप्पी? प्रिंसेस,
1: प्रॉमिस इट्स अ गेम. और हमें स्कूल
3: नहीं छोड़ना पड़ेगा. आई प्रॉमिस.
1: शो योर टंग.
3: ब्लैक और पिंक?
2: पिंक.